हर जग में परवरे हो। निरंकार आप गुरु नानक दे रूप विच संसार ते प्रगट होए ते फिर वही गुरु नानक अपने प्यारियां दी संगत विच अपने प्यारे गुरसिखां दे विच दर्शन दे रही है ते शब्द रूप विच बैठा होया अपना विचार दे रहा। कदे साहब कलगीधर पातशाह ने कहा सी गुरसिखां नूं, सिखां ने पुछिया महाराज तुसीं तां शरीर करके साथों अलग होना लोड़दे हो, असीं की करांगे। साहब कहण लगे की चाहुंदे हो कि महाराज दर्शन किदे करांगे, गल्लां किदे नाल करांगे, पूजा किसकी करांगे। साहब कहण लगे पूजा तां तुहानूं मैं पहलां ही एक अकाल दी समझा चुका, पूजा अकाल पुरख दी करनी, मेरा दर्शन करना है तां खालसे दा दर्शन करना, मेरे नाल गल्लां करनियां ने गुरबाणी दी विचार करनी, गुरु के बचना दे अनुसार ही होगे, गुरु के बचना नूं ध्यान नाल पढ़ो सुनोगे गुरु नाल गल्लां करदे जापोगे। इत्थे भाई साहब कहिंदे ओही वाहिगुरु अकाल पुरख गुरु दा रूप धारण करके प्रगट होया ते फिर शब्द विच समा के बैठ गया ते संगतां विच गुरसिखां विच बैठ गया। जद ऐसा होके बैठा है तां गुरसिखां दी मन्नेगा, साध संगत दी बेनती ते अरदास प्रवान भी करेगा, उन्हां दी लोड़ां दा ख्याल भी करेगा। भाई साहब कहिंदे नूं करन कारण समर्थ वाहिगुरु साध संगत दा करे कराए, सारा कुछ उहदे भंडारियां च भरिया पिया पर साध संगत दा दे दवाया, साध संगत जिन्हू चाहे दवा देवे जो चाहे लै लवे। पार ब्रह्म गुर रूप होए साध संगत गुर शब्द समाया, पार ब्रह्म गुरु दा रूप होकर के साध संगत विच गुर शब्द बैठा है, जिसनू लोकां ने जग भोग जोग ध्यान कर अनेकां कर्मकांडां दे नाल अनेकां जतनां दे नाल पूजा परे ना दर्शन पाया, किसे नूं लब्भा नहीं, किसे नूं दर्शन नसीब नहीं होए, गुरसिखां ने उहनां नूं लभ लिया, संगत विचों लभ लिया, गुरु शब्द विचों लभ लिया, और ऐसा लभिया इन्ने नेड़े हो गए, इन्ना प्यार पा लिया, इन्नी सांझ पा ली, प्यो पुत्रावां एकमेक हो गए। और फिर एक होर गल, वो जग भोग जोग ध्यान करने वाले तो कई बार संसार नूं छड्ड के बाहर भटकते नजर आए, गुरु का सिख संसार च रहिंदे आ।

ऐसा पुल है। भाई साहब कहते ने एक बारी नहीं पांच बारी गंगा चला जाए, पांच पांच बारी प्रयागराज जाके त्रिवेणी दे इशनान करे, एक सिख

भगत नामदेव जी अपने शब्द विच ये दसदे हन कि दुनिया दे काम करदे हां परमेश्वर दा नाम किस

काम करते हैं नाम किवें जपना है सिख्या लै पंगोड़े कोलो ते बच्चे कोलो। जिस तरह एक मां अपने बच्चे नू पंगोड़े विच पा के अंदर बाहर काम

कभी किसी ने राम का नाम नहीं लिया, पर ये कबीर ऐसा पैदा होया, ये हर वक्त राम राम करता रहता। जदू दी इन्हें माला फड़ी

मैं ओदा पुत्र ही नहीं, पोंगड़ा पुत्र नुखे है। ए मां तू कहनी नाम ना जाप, जा मैं तेरा पुत्र ही नहीं ते ना तू मेरी मां है। ए पिंड ए शरीर खत्म हो जाए।

जे मैं नाम जपना वा ता जीना, जे नाम नहीं ते फिर नानक भी नहीं। आखा जीवा

मैं परमेश्वर दे कोल नू विछड़ के आया। तेरे कोल कोई एहो जी कुड़ी है जिड़ी मैं खावां ते परमेश्वर दे नाल मेरा मेल हो जाए। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक मैनू भुख दा दुख है। मैनू घड़ी मुड़ी भुख लगती है, कादी साची नाम की लागे भूख। तेरे कोल कोई एहो जी कुड़ी है जिड़ी मैं खावा ते ए मेरी नाम दी भुख मिट जावे। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सकत वार जमदूत। एक मैनू जमदूतां दा दुख है। तेरे कोल कोई एहो जी कुड़ी है जिड़ी मैं खावा ते मेरे जमा दा ए जड़ा डर है दुख ए दूर हो जाए। एक दुख सकत वार

वैद ने हाथ जोड़ ले कहिंदा ऐ नानक मैं ता तेनू कुछ होर समझिया सी पर तू ता आप रब निकले जेड़े दुख तू दसे ने इन्हां दुखां दी दवाई मेरे कोल किथे ऐ नानक पातशाह मेरी ते कृपा कर मेरे मन नू बड़े रोग लगे ने मेरे मन दे रोग दूर

हमारी जेबा एक ग्राम हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जमे आन हर तुम बड अगम अथाह।

0: निर्वैर पुरुष सतगुरु प्रभु दाते
1: निर्वैर पुरुष
0: सदगुर प्रभु दाते हमें अपराधी तुम बख्श दाते जिस पापी को

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उपदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखते ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वडियाई है या गुरमुखां दी वडियाई जो हर मिलने वाले नूं ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चिए वरतीए उन्ना ही जिमें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजयाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावें कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रा दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नूं किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहने की जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नूं महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तो अनादि काल तो सारे मंगदे आए ने ते दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने। पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सरार, काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सरार भी फारसी दा लफ्ज है। काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला, प्रगटाण वाला, इसम फाइल। ते सरार सिर वाहद, सरार जमा सिंगुलर प्लूरल, एक बचन बहु बचन। सरार मीन्स बहुते पेद, जीवन दे अनेका ही पेतां।

विसर गया है मरण, तेनू विसर गया जिस वाहिगुरु ने संसार ते भेजिया है उसने सदना भी है, जिस वाहिगुरु ने तेनू अमोलक स्वासा दी पूंजी हीरे लालां तो महंगे तेरे स्वास, ते उसने हिसाब भी तो मंगना है उना स्वासा दे लाला नाल कितने को तू नाम दे लाला दे वर्ज कीते हन उथे ता लेखा पुछया जाना, इसलिए सानू चेता करा रहे हन धन गुरु नानक पातशाह कहंदे विसर गया है मरना चेता कर मालक ने सदना तैनू।

पर छेती घर जावो। इना अमोलक हीरियां लालां तो महंगे स्वासां दे नाल जे तू नाम दा वणज करके जावेगा ता तेरी इज्जत रह आवेगी, तेरा आउना सफल हो जावेगा। जिस कारज लई मालक ने तैनू घल्या है उदी सफलता ही सिमरन विच है, नाम विच है। ऐसा ना होवे अखां नीवियां पाके तू जाके बह जावे जिवें जुआरिया हार के बह जांदे चले जुआरी दोए हाथ जा। हजूर कहंदे ने इन्हां अमोलक स्वासां दे नाल ओ धन कठा कर जेड़ा इथे भी तेरी सहायता करे। जदों तू पंज भूतक शरीर त्याग के जावे दरगाह विच भी तेरे नाल होवे। जदों तू आया सैन तेरे कोल स्वासां दी पूंजी सी, ऐसा ना होवे तू जावे ते तेरे हाथ दोवें खाली हो, अपनी प्रतीत भी गवा के जावे। इसलिए हजूर कहंदे ने आया सें स्वासां दी पूंजी लैके जा तां नाम दा धन खट के जा, फिर तेरा आउणा सफल है।

नाम रूपी अमृत पीत है। ओह ही सुचे रहे हन सुचे से ही नानका, जिन मन वसिया सोए उस परमेश्वर दा नाम जे हिरदे विच वस गया ता तू साफ सुथरा सोना बन के निरंकार दे द्वार जावेगा। ते जे सिमरन नहीं कीता विकारां विच तू फस गया ता अपनी आत्मा नू ही कलंकित करके जाएगा। किसे माड़े पुरुष नू संसार विच नहीं रहन देंदे, कोल नहीं बैठन देंदे। आख्या ऐसे तरह जदों तू दरगाह विच जावेगा उथे भी तेनु कोई कोल ना बैन देवेगा। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इसलिए गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ओह ही सुचे हन ओह ही चंगे हन जिन्हां ने जपया।

समुंदर दे किनारे एक जोगी राज अपनी अखां बंद करके बैठे सामने एदे एक लोहे दी संदूकड़ी।

गुरु साहबानी उस वक्त ए शब्द उचारिया, काल नाही जोग नाही नाही सत का डब, थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग। कोई जोग नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सच नहीं, इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट होंदी जा रही है, ए सारा संसार डूबता जा रहा है। कल मैं राम नाम सार ए भाई पखंड छड़ दियो, कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिना लोकां दी सोझी क्यों झूठ बोलना है। अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है। ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठग

पाछे कछु ना सूझे। तेनु अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखिया इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गया ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनु संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना है कि मैं

कुरान भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां दा अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हर के मुक्त नहीं कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदों तक तुसी मन करके नहीं जपोगे भाई तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी।

भगत कबीर सावदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर, दामोदर भी भगवान का एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन, ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटिया दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बन्नियां ने, गला विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े, ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नूं गल्ली बाती जंगल विच लै गए ने। उत्थे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओह खोलिया। इस सेठ नूं जानू मारन लगे ने, पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया, ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे, ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं तां संत समझे, पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देण लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उत्थों भजे। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई वह संत नहीं, पता है वह कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान

मैं ता मथा टेकिया कि ए ता पहुंची हुए संत ने। ते कबीर साहब कहन लगे भाई ए उन्हां दियां गुप्त बोलियां ने जिन्हें क्या नारायण उन्हें तेनू देख लिया ते उची सारी अपने साथियों नु किया नारायण मतलब के कोई बंदा आया ओदी आवाज सुन के दूसरे ने किया दामोदर के जेड़ा बंदा आ रहा है एद कोल माया भी चंगी लगदी ते तीसरे ने किया बिंद्राबन ओ कहन लगा कोई नहीं आ जान दियो जंगल विच ले जा के इनू जानू मार के ते लुट लवांगे ते ओ सेठ कहन लगा कबीर साहब पर इना दा पहरावा एडा सोहना ते काम इन्ने माड़े ते कबीर साहब जी फिर अपनी बाणी विच इना लोकां बारे इवें बयान कर

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

कबीर साहब कहन लगे एहो जे संत चंगे नहीं लगते जेड़े डाला कहंदे ने टाणिया नूं पेड़ा दरख्त नूं गटकावे खा जाना कि जेड़े टाणिया समेत ही दरख्त नूं खा जांदे ने भाव के माया पिछे इंसान

के भांडे जेड़े ने चंगी तरह मांज मांज के चुले ते रखदे ने। काठी कहंदे ने लकड़ा नूं, जेड़ियां लकड़ां जंगल विचों लियांदे ने, उन्हां लकड़ां नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने, सुचता इन्नी रखदे ने।

धरती वसुधा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने लकड़ा भी धो के बाल देने पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाण।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेकी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्लां बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ तनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेकी संत ने अपना आसन चुकया, ओ माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर

दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांसली

समझ लिया कि मेनू थैली लुकांदे आ नामदेव ने देख लिया। पेखी संत कहन लगा, सेठ जी ओ जिड़ा नामदेव सामने बैठा सदा पे आए ने, तुहाडी वासली ओदे कोल है। सेठ उठिया ते भगत नामदेव दे गल पै गया, कहन लगा मेरी थैली दे। होर भी दो चार आदमी इकट्ठे हो गए ते सारे भगत नामदेव नूं कुट्टण लग पए। ओ जिहड़ा पेखी संत सी अपना वड्डापण दसण वास्ते अपने आसन तों उठिया, उन्हां लोकां नूं कहण लगा नामदेव नूं मारो ना, जे इन्हें माया वाली थैली चुकी है ते आपे परमेश्वर इनू सजा देवेगा। इन्हे इन्नी गल कही, उधर एक हवा दा बुला आया, उस पेखी संत दा आसन उड़िया ते थलों माया वाली वांसली नजर आ गई। उस सेठ ने ते लोका ने नामदेव नूं छड़ दिता ते उस पेखी संत नूं फड़ के कुटन लग।

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपना जे तो आड़ा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बेंदे हो।

तितर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जो नर जाने, भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तितर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर ए खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े, ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ, असीं त्यागी, पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले तां लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

मैं पखंड नहीं करदा। उस परमेश्वर दा नाम जपया उदे नाल मिल गया। ऐ भाई तुसी भी मन करके उदा नाम जपो, तुसी भी इना पखंडा तू

माया नु ज्यादा प्यार कर दे, ऐसे वास्ते ठग ते चोर बन दे, पापी बन दे। ते जदू परमेश्वर दे नाम दी गल आवे उदू पिछा हट जांदा। माया वास्ते इंसान किन्ने झूठ बोलदा है, पर परमेश्वर दे नाम दे लागे नहीं जांदा। एक महापुरुष अपनी श्रद्धालु दे घर कुछ समा रहे, तुरन लगे ते घर वालिया ने रस्ते वास्ते महापुरुषां लई चार आलू दे परौंठे बना दिते। महापुरुष तुरे, एक लालची ठग जिहड़ा सी उन्हें देखिया कि महापुरुष अपने श्रद्धालु दे घरों बाहर निकले ने, इन्हां कोल जरूर माया होवेगी ते इन्हां दे नाल ही चलना वा इन्हां दा सेवक बन के। जदों दा लगा माया कढ लवांगे। महापुरशां नूं कहण लगा, ऐ महापुरशो मैनूं अपना सेवक बना लो, मैनू भी अपने नाल लै चलो, मैं तुहाडी सेवा करांगा। महापुरश कहण लगे, चंगा भाई। नाल तुर पिया। तुरद्या तुरद्या दोपहर हो गई, एक नदी आई। उस नदी दे किनारे महापुरश खलो गए। कहण लगे, भाई मेरा चित करदा है मैं इशनान कर लवां। महापुरशां ने कपड़े लाए, इस लालची ठग नूं अपने कपड़े दे के कहण लगे, तू कपड़े संभाल ते मैं जरा इशनान कर लवां। कहण लगा, महापुरशो तुसी फिक्र ना करो, मैं चंगी तरह संभाल करां। महापुरश ते नहाण चले गए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਰੌਂਠੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਚਲੋ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ। ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, कपड़े पाए। कहन लगे, आ भाई तेनू भी भुख लगी होनी है, चार परौंठे ने, दो तू खा ला दो मैं खा ले। जदू पौना खोले ते परौंठे तीन निकले। महापुरश कहन लगे, भाई परौंठे ते चार सीगे, एक परौंठा तू ते नहीं खाद। ए लालची कहन लगा, महापुरुषो मैनू ते पता ही नहीं कि तुहाडे कोल परौंठे भी हैगे। महापुरुष कहण लगे, होर कोई आया नहीं, तेरे बगैर कौन खा सकदा, सच दस परौंठा तू ही खादा है। कहण लगा, महापुरुषो कमाल हो गई, मैं तां परौंठा देखिया ही नहीं ते खाना कित्थों। महापुरुष समझ गए कि परौंठा जरूर इहने खादा, ते ओ लालची भी समझ गया कि महापुरशां नूं पता लग गया कि मैं परौंठा खादा। पर कहण लगा, ये जो भी कर लैण, मैं केड़ा मनना है कि परौंठा मैं खादा। ओ परौंठे खा के अगां तुर पए। नदी पार करनी सी ते महापुरश कहण लगे, भाई सच दस, जे तू सच ना बोलिया ते आपां दोवें डुब जावांगे। नदी पार करनी है, सच दस परौंठा तू खादा है। कहण लगा, महापुरश कमाल हो गई, जद मैं परौंठा देखा ही नहीं ते खाना कित्थों सी। नदी पार कर ले। महापुरश कहण लगे, बड़ा ही ठीठ है, ये तां मनदा ही नहीं। ते ओ लालची अंदरों अंदरी हसदा जांदा है ते कहिंदा, महापुरशो ला लो जिन्ना जोर लाना है, मैं केड़ा मनना है कि परौंठा मैं खादा। और अगे गए, जंगल आया, जंगल नूं अग लगी सी।
महापुरुष कहन लगे भाई अग लगी जे झूठ बोलिया आपा दोनों सड़ जावांगे हुण तां दस दे परौंठा तू ही खादा है। कहन लगा महापुरशो रब दी सौ मैं परौंठा देखे नहीं ते खाना कित्थों सी आख भी पार कर ली। महापुरश कहन लगे ए तां बड़ा ही ढीठ निकले मनदा ही नहीं ते ओ भी कही जांदा महापुरशो ला लो हां जोर जिन्ना लाना है मैं केड़ा मनना है। अगे एक माया दा ढेर आया महापुरशां ने उस माया दे तीन हिस्से कीते ते ओ ठग कहन लगा महाराज आदमी आपां दो आ ते माया दे तीन हिस्से क्यों कीते ने ते महापुरश कहन लगे भाई एक हिस्सा ते तेरा ते एक मेरा ते एक हिस्सा ओदा जिन्ने ओ परौंठा खादा सी जे ओ एथे होंदा ते अपना हिस्सा ओ भी लै लैंदा ते जदू ए सुनिया ते छाल मार के उस ढेर ते जा पे नाले माया फड़ ली ते नाले कहंदा महापुरशो मारो भावे रखो ए ढेर मेनू दे दियो क्योंकि ओ परौंठा मैं खादा सी। ते महापुरश कहन लगे भाई इस माया ने ते तेरे नाल नहीं जाना जदू तेन सच बोलन वास्ते कहा ते रब दी सहु खा गए माया दा सवाल आया ते सच बोल पिया पर ए माया तेरे नाल नहीं जाने ए कल खत्म हो सकती है पर परमेश्वर दा नाम ओ ता कदी भी खत्म नहीं होंदा भाई इस वास्ते कल मैं राम नाम सार इस कलयुग विच उस परमेश्वर दे नाम ने ही तेरी सहायता करनी है होर किसी ने भी तेरी बाह नहीं फड़नी।

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोताए। मथुरा कहिंदा है पट के जब तक साडे भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कलयुग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावें जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावें सनकाद साध सिदादक मुन जन गावें अछल छला, गावें गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिनिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखी है। साथ संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरा दा जिक्र राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचते हैं कि कोई जपन वाला साड़ी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लैके देवते लैके अपनी पुरियां विच जा रहे सन ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई, राजे जनक ने पुछया है कौन रो रहे हैं, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए हुए जीव अपने कर्मां दे अनुसार भोग भोगदे हैं, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जिहड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जिहड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पा के, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, ओ स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, ताई आखिया

चंगा फिर पंडित जी इस तरह करो एक ठाकुर मैनू दे दे। पुजारी नु गुस्सा चढ़ गया। पुजारी कहन लगा जाओ तनिया जाके अपना काम कर, ये कोई मखौल है, मंदिर विच मूर्ति चुक के मैं तैनू दे दें, पर जिहड़ा धरना है इहदे मन विच ये गल बैठ गई कि सेवा

ने कोलों पुजारी ने अपना पिछा छुड़ा लिया। होने ते फर्क है, ओ पुजारी पत्थर दिया मूर्तियां दी पूजा करदा है, पर पत्थर समझदा ते तरने नू उस पुजारी ने कोई मूर्ति नहीं दिती, बारू एक पत्थर चुक के दिता। पर तन्ने दी भावना उस तन्ने ने उस पत्थर नू ठाकुर समझ के ते अपने सिर ते चुक लिया ते मन विच की

जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी रोटी नहीं खानी पावे मेनू भुखिया मरना पवे। साध संगत जेड़े लोग ए गल कहंदे ने कि थे रब

जे देखना है उस नूं ते भगत धन्ने वर्गा अपना मन बना लो। कदी क्या किसे ने ऐ ठाकुर ऐ सतगुरु ऐ रोटी पई जद तक तू नहीं खावेगा असी नहीं खाए। जद कदी क्या नहीं ओनू मिलन की कोशिश नहीं की ते सानू और रब ओ सतगुरु किस तरह मिलेगा। ऐ तन्ना बैठे कहन लगा ठाकुर फैसला कर ले है, जे तू नहीं खानी ते मैं भी रोटी नहीं खानी। जद मन विच ए धार ले है, ता उस परमेश्वर नू आना पिया परतख होके तन्ने दे सामने बैठ गए। तन्ने नू देख के मुस्कुरा पे तन्ने ने

0: हर अखो सतनाम।
1: जिथे बाबा पैर जिस धरती ते चरण पाए उस स्थान ते पूजा अकाल पुरख भी शुरू हो गई। ते जे किसे प्यार वाले दे हिरदे दे विच चरण पाए उस हिरदे विचों भी अकाल पुरख की पूजा शुरू हो गई। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ। माण करो जिस दयालता दी जिस कृपा दे उत्ते गुरु नानक दी सोई पहुंची है किसे दी नहीं पहुंची। बाबा जी वचन कर गए सी गुरु नानक साहब जी दे दुनिया नूं तारां दे विच चार विशेष गुण सन। चार विशेष गुण की सब तो पहला विशेष गुण के अज तक कितने मिसाल नहीं के अवतार पापी दे घर चल के गया होवे आ भी झोली कर दात लै लै आखो सतनाम। दूसरी विशेष गल जिन्हों भी तारिया वाणी का तीर मार सात संगत। तीजी विशेष गल जिन्हों भी तारिया उदा पिछला लेखा नहीं पुछया गज के आखो सतनाम। नहीं तो लेखा तो है ना। पर तुहाडे सामने मिसाल है कि सजन ठग का पिछला खाता किथे गया जज के आखो सतनाम। माण करो ये गुरु नानक। दीपालपुर कौड़ी का पिछला लेखा किथे गया कौडे राक्षस का भूमि चौर का बली कंधारी का। सतगुर गुणी निधान है गुण कर बख्शे अवगुण आरे। किते ते सजा दे के औगुण नूं बख्शिया जांदा है किते गुण कोलों दे के औगुण लै के इंज औगुण बख्शे जांदे। ए तीजी विशेषता पिछला लेखा नहीं पुछिया पिछला साव नहीं पुछिया गुरु प्यारे। हुण इक चौथी गल सुनो फिर होर प्यार आ जांदा है। गुरु नानक दे चार तारण विच चौथी विशेषता कि जिदे ते नजर कीती है उनू केवल तारिया नहीं उदी इन्नी की बैटरी चार्ज करती कि अगों कईयां नू तारन वाला बना दिता है गज के आखो सतनाम। बड़ी वड्डी गल है इक ते इनू तार दिता उनू अगों जोगा बना कोई ले लो सज्जन ठग नूं लाके दा थापता लै हुण तूं देख उहदा केवल उहनूं नहीं तूं थारण योग बण। सालस राय गौरी नूं निरी उहदी अख नहीं खोली नाल मंजी दे दित्ती आ इन्ने साल तेरी उमरी तेरे बादों तेरा नौकर बैठेगा अधरका। ओ फिर इस सारे इलाके नूं निरंकार दे घर चो दातां लैके गज के आखो सतनाम। ਮਾਣ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀਏ।

जे उंज असी कहीए ना ते असी ते जागदे ही रहने जी, बड़ी बड़ी रात जागदे रहने। मैं गल इथों आरंभ करन लगा, जिन्ना क मैं जीवन आदर योग राजा साहब दा पढ़िया है, पहलियां करामतां करामातां रहमतां आसीसां दुआवां दे भंडार असी परसों तक वेखते रहे हैं, सुनते रहे हैं। लेकिन एक अगला बाब शुरू हुंदा है, अगला चैप्टर शुरू हुंदा है कि माहफियत अंदर सूफियाना तबीयत विच कैसे सन। बहुत सन, खूब सन जी, बहुत ही खूब सन। दरअसल माहफियत नाल ही उस परमात्मा नाल जुड़ना है। ते ए साडे साहत अंदर, पंजाबी साहत की मैं गल करन लगा, और साडे कल्चर अंदर यह गल है कि बड़े बड़े इत्थे सूफी फकीर होए ने, बड़े बड़े सूफी फकीर होए ने, और उन्हां चों तां एक दो चार ते गुरु अर्जन देव जी पास आए कि साडी भी कलाम चढ़ा दिओ, साडी भी बाणी चढ़ा दिओ। सतगुरु कहण लगे सुनाओ जी। सुनाई ते गुरु अर्जन देव दे पाए तो नीवी सही, आख लगे ने वे साडी तां कसवटी ए है, वह तो यह नीवी गल है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहब दर्ज नहीं हो सकती। वैसे तुसी सूफी कलाम लाए, बहुत मेहरबानी। बाबा फरीद का मैं एक जिक्र कर लेवा, वह कहते ने मैं रब हुणे ही मिला दिना, मैं रब हुणे ही मिला दिना, अजे मिला दिना। ता किंतु परंतु करने वाले बंदिया ने आख्या, बाबा तू तो वरिया तोड़ी घरों बहर फिरदा रहा, नंगे पैरी नंगे तन काड़ दी रोकी ये समझ के भी असली है कोल रही फिरदा रहा, लावण मेरी भुख समझ के फिरदा रहा, तू इन्हें ततीशा कीतिया पुठा लटकिया रहा, कामा ने तेन खा लिया ठूंग लिया, हूं तू कहना है मैं अज मिला दिना। कहता हूं ही समझ आई है, हूं मैं दस सूफी बात दी है, जदों समझ आ गई उदों दस दिती है। ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह किन्ना धनवाद करिए, हदों वध करिए, जिन्होंने साडे वास्ते कलाम गुरु ग्रंथ साहब जी विच बाहिफाजत रख ली है। बाबा फरीद कहंदा

फिर उदासियां वाला पेक बनाया ते हुण फिर संसारी कपड़े पहन के इत्थे बैठे हो। तुहाडा की धर्म है? भाई साहब गुरदास जी लिखदे हन, खादी खुणस जोगी सरा, गोश्त करन सबे उठ आई, पुछे जोगी भंगरनाथ तोए दुध विच क्यों कांजी पाई। फिटिया चाटा दुध दा रिड़किया मक्खन, हाथ ना आई ते इस दा भाव की सी, आख्या पेख उतार उदास दा वत क्यों संसारी रीत चलाई। उदासियां वाला साधुआं वाला पेख लहा के तू फिर संसारी कपड़े पा ले हन, इस तो भाव है कि फिटिया चाटा दुध दा रिड़किया मक्खन, हाथ ना आई पेख उतार उदास दा वत क्यों संसारी रीत चलाई। इसका जवाब दियो ता धन गुरु नानक पातशाह ने जवाब दिता नान